0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का साधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर

यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 854 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा

राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग अक्रॉस ऑल 285 पोलिंग स्टेशंस एट फालता असेंबली कंस्टिट्युएंसी इन वेस्ट बंगाल ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. More from our correspondent.
3: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting

0: नीट यूजी अज होगी। प्रीख्या अज दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी ते शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट दे जानकारी बुलेटिन मुताबिक प्रीख्या केंद्र विच आखिरी दाखला दोपहर बाद 1:30 बजे तक दिता जाएगा। नीट यूजी 2019 तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सिक्ख्या विच दाखले लई राष्ट्रीय जांच एजेंसी वालों कराई जा रही है ते इसकी प्रवानगी सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ते सिक्ख्या मंत्रालय वालों है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली और आम चेतावनी प्रोटोकॉल वर्गियां तकनोलॉजियां अपनाउन नाल आफत नाल निजटण की तैयारी नूं काफ़ी मजबूती मिलेगी। कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली की शुरुआत समय उन्होंने कहा कि यह शासन भी सुधार करेगा तो हरेक नागरिक नूं जानकारी तक समय सिर से प्रभावशाली पहुंच यकीनी बनाएगा। यह प्रणाली हंगामी स्थिति से कुदरती आफता बारे चेतावनियां प्रदान करेगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली की शुरुआत की। इस नूं दूरसंचार विभाग के अधीन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स वालों आफता समय प्रबंध बारी राष्ट्रीय अथॉरिटी और गृह मंत्रालय के सहयोग नाल स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया सी। कल देश भर में इस प्रणाली की सफलता नाल जांच की गई। देश भर में मोबाइल फोनों से हंगामी चेतावनी संदेश प्रसारित किए गए। नागरिकों के मोबाइल फोनों से सायरन चेतावनी नाल एक सूचना भेजी गई। नवी ते नवियाउणयोग ऊर्जा बारे सकत्तर संतोष कुमार सारंगी ने अज अंतरराष्ट्रीय सूरज दिवस से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विच रन फॉर द सन मैराथन नूं हरी झंडी दे के रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि सूरज की रोशनी सारिया लई ऊर्जा का सब तो वड्डा स्रोत है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पेशीनगोई की है कि अगले 2 दिनों लिए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई हिस्सों में गरज नाल हरीनी झक्खण आउण ते बिजली लिशकण की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर विच होए इंडियन इनडोर ओपन कंबाइंड गेम्स एंड पोल वॉल्ट मुकाबले विच मर्दा दे पोल वॉल्ट विच 5.41 मीटर दी छाल मार के सोने का तमगा जितया है। 21 साला कुलदीप कुमार ने देव कुमार मीना दे 5.40 मीटर दे राष्ट्रीय रिकॉर्ड नू पार कर लिया है। IPL क्रिकेट विच बीती रात चेन्नई दे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम विखे चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस नू 8 विकटां नाल हराया। आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम विखे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल दोपहर बाद 3:30 बजे और एक होर मैच विच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम विखे पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल शामी 7:30 बजे होगा। आखिर च खास खबर। चोन कमिशन ने पश्चिमी बंगाल के फाल्टा विधानसभा हल्के के 285 वोट केंद्रों से इस महीने की 21 तरीक न मुड़ वोटिंग कराने का आदेश दिता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फैसलाकुन कार्रवाई राही दहशतगर्दी खत्म करने के सरकार के दृढ़ इरादे का प्रतीक है। भारत आने वाला एक होर LPG टैंकर होरमुस पणजोड़ सुरक्षित पार कर गया है तो अमरीका जर्मनी तो अपने 5,000 फौजियों वापस बुलाएगा। इस नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मसीही भजन हुण सुनदे हां तरसीम होना दी आवाज़ दे विच ए मसीही भजन।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸੀਹੀ ਭਜਨ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਜਮਲ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।

ईसी मसीही भजन मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9 बजे ने हुन पेश ने मुख खबरां।

चोन कमीशन ने पश्चिमी बंगाल दे फाल्टा विधान सभा हल्के दे सहायक वोटर केंद्रा समेत सारे 285 पोलिंग स्टेशन से दोबारा वोटिंग दे हुकम दिते ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर नु फैसला कुन कार्रवाई राही दहशतगर्दी नु खत्म करन दे मोदी सरकार दे अटूट इरादे दा प्रतीक दस्या है। भारत आने वाला एक होर LPG टैंकर होरमूज पंचोल नु सुरक्षित पार कर गया है। अमरीकी जर्मनी तो अपने 5000 फौजियां नु वापस बुलाएगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा मेंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानती धाराओं तहत FIR दर्ज की। BJP ने उसनु बदलाखोरी वाली सियासत करार दिता। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने किया है कि पंजाब जेलां ते सुधार सेवावां बिल 226 आधुनिक मनुखी अते सुरक्षित जेल प्रणाली वल महत्वपूर्ण कदम है। बीते दिनी पटियाला नेले राजपुर शंभू रेलवे पटरी नू बंब नाल उड़ान दे मामले विच पंजवां मुलाजम गिरफ्तार। मौसम विभाग वल्लों पंजाब विच 5 मई तक

0: शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च हुणे तुसी रत्नाकर व्यास होना तो सरोत ते वजाया राग नट भैरव सुन रहे सी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे साढ़े नौ होए ने। हुण पेश है साइंस मैगजीन प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान।
1: ज्ञान विज्ञान
2: ज्ञान विज्ञान का यह अंक लैके असी हाजिर हाँ। सारे सुनने वालों नू नमस्कार। अज इस विच रूपक सुनाया जाएगा प्रवासी पंछी। इस अलावा विज्ञान तत्त ते विज्ञान खबरां भी होणगियां। शुरुआत करते हाँ विज्ञान दे इस तत्त नाल। होरमोज जल डमरू धरती ते मनुखा दे होण तो पहला ही बनिया सी। एक समुद्री लांघे की सिरजणा की कहानी जो हुण दुनिया ते राज करती है। आओ जानते हैं इस बारे। अमरीका इजराइल ते ईरान विचकार जंग दे दरमियान होरमोज जल डमरू अज सब तो वध चर्चा का विषय है। इस नूं होरमोज जल डमरू भी कहा जाता है। दुनिया के सब तो महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों विचों एक मनिया जाता है। यह तंग समुद्री लांघा दुनिया के ऊर्जा व्यापार का 20% लैके जाता है। पर यह समझने लई कि पानी की यह तंग पट्टी अज आधुनिक दुनिया ते किवें राज करती है सानू इतिहास विच डूंघाई नाल जाण दी लोड़ है। होरमोज जल डमरू धरती ते मनुखां दे आउण तों पहला ही बणिया सी।

एक विशाल देश है जो कि कुदरती स्रोतों नाल भरपूर है। इत्थे पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, वड्डियां वड्डियां झीलां, नदियां आदि सब कुछ मौजूद है। भारत का मौसम भी ना ज़्यादा गर्म है ते ना ज़्यादा ठंडा। ये मौसम पशु पंछियों के लिए अति उत्तम है। ते इहो कारण है कि भारत के संघने जंगल, झीलां ते जलगाहां दुनिया भर के पंछियों नूं अपने वल खिंचदे ने। ते दुनिया भर तो कई प्रजातियां दे खूबसूरत परिंदे उड़ के भारत विच प्रवास ले आउंदे ने। ते इन्हां पंछियों दीआं सैकड़े प्रजातियां दे प्रवास का मुख कारण भोजन की तलाश

5000 फौजियों नू वापस बुलाएगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा मेंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानती धारावां तहत FIR दर्ज की। बीजेपी ने इस नू बदलाखोरी वाली सियासत करार दिता है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा है कि पंजाब जेला ते सुधार सेवा बिल 2026 आधुनिक मनुखी अते सुरक्षित जेल प्रणाली वाल महत्वपूर्ण कदम है। बीते दिनी पटियाला नेड़े राजपुर शंभू रेलवे पटड़ी नू बंब नाल उड़ान दे मामले विच पंजवां मुलाजम गिरफ्तार। मौसम विभाग वालों पंजाब विच 5 मई तक गरज चमक नाल दरमियानी बारिश ते गड़ेमारी बारे येलो अते ओरेंज अलर्ट जारी। BCCI अते ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2026 लई भारतीय महिला टीम दा ऐलान कर दिता गया है। हरमनप्रीत कौर टीम दे कप्तान होंगे। मध्य प्रदेश दे पोल वाल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस सन हुन तक दिया मुख खबरां।

0: प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो फरमाइश ते आओ देखते हैं साड़ी नाल हुन केड़े कॉलर जुड़े ने। हैलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैडम जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी राजू जी, प्रोग्राम दे विच आए हो, तुहाड़ा स्वागत है।
1: धन्यवाद जी। मैडम जी, जुदाई फिल्म का गीत सुनना है।
0: बिल्कुल जी, जुदाई फिल्म का गीत सुनावांगे। और राजू जी, चंडीगढ़ के मौसम का की हाल है?
1: मौसम मैडम जी, बारिश हो गई बहुत, हवा बहुत चली है जी।
0: जी, ते जुदाई फिल्म का केड़ा गीत सुना दिए?
1: मार गई मुझे तेरी विदाई।
0: ठीक है जी, लो जी पहुंच ही रहा है तू हेडी तक। फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो फरमाइश। तो प्रोग्राम दे विच हुन देखते हैं कौन हैलो कहना आए ने। हैलो,
1: हैलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी,
1: मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ बलवीर कोटले तो।
0: जी राकेश कुमार जी, स्वागत है प्रोग्राम विच।
1: धन्यवाद जी, तुहाडा भी स्वागत है जी।
0: वाह जी वाह, तो दस दियो फिर आप जल्दी दे नाल गीत पूछ लिए तो हानू।
1: हाँ जी, फिर भाई धड़क का सवाल है टाइटल सॉन्ग।
0: ठीक है जी, बिल्कुल सुनावांगे। ते पर उस तो पहला असी अंदर हाल भी लेना है।
1: ठीक है, धन्यवाद जी,
0: कॉल करने के लिए शुक्रिया। लो जी, अगला गीत ते सानू दस के नहीं कि इन्हें कहड़ा सुनना है, तो बिल्कुल सुनावांगे। पर उस तो पहला कुछ सुने हे जिड़े तुहाड़ी तक पहुँचाने ने।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: लो जी, इन्हां सारी सुनेहां तो बाद सुनदे हां दोस्त दा फरमाइश कीता ई गीत।

0: प्रोग्राम हेलो फरमाइश दे विच साडे अगले कॉलर बिल्कुल रेडी बिल्कुल तैयार। हेलो वाह जी वाह बिल्कुल जी।
1: कुलदीप सिंह बोलदा पिंड लाडियां खुरद जिला लुधियाना ना।
0: स्वागत है जी तुहाडा भी प्रोग्राम दे विच आउण लई। कल लगदा रेडियो सुनिया नहीं। कल
1: हां जी
0: कल रेडियो सुनिया सी। बिलकुल बिलकुल ठीक है जी। दसो जी गीत केड़ा सुनिए।
1: जराना मूवी दा ते गाने दे बोल आ जी जलंधर जैसा यार कहां कहां ऐसा यार आना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा जराना।
0: वाह जी वाह बिल्कुल जी। जलंधर आकाशवाणी वर्गा दोस्त किथे है ना।
1: हाँ जी हाँ जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद गल करने।
0: शुक्रिया जी फोन कॉल मिलाने दे लई। लो जी गीत पहुंच रहा है।

0: ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आईं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि आग 4 मंजिला इमारत में लगी।
4: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। श्री संधू ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत तथा सहायता प्रदान की जाए। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा मंडल में मुलापालेम गांव के उदय एक्वा उद्योग का दौरा किया। यहां राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों के लिए मछली उत्पादन बढ़ाने, आय के स्रोत बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने पर विचार विमर्श किया गया। श्री नायडू ने कहा कि श्रीकाकुलम जिले को प्रमुख एक्वा केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन की सिफारिश

0: बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से पराजित किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: ਹੁਣ ਫੋਲਾਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ
0: ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से। हुण पेश है प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी। व्हाट्सएप आधारित प्रोग्राम है और साडे कोल बहुत सारे सुनेहे ने, मैसेज ने, और प्रोग्राम व्हाट्सएप आधारित है। आप एक बार फिर दस हैं, थोड़े नाम शामिल करते हैं इस विच। हीराबाग जगराओ लुधियाणा तो जगदीश पाल मेहता, लीलावती हरदीप अंजू पारूशी दीपांशु मेहता परिवार। अगला मैसेज इन्होंने सिर्फ मैसेज विच हैलो भेजा है, सो जो तुम सूँ मैसेज करते हो तो राजकुमार इन्हों का नाम है, पर कितों लिखा है इन्हों ना कोई जड़ा है शहर या किसी पिंड का नाम नहीं लिखा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा, रियास, मुहम्मद, समरीन, परवीन, माहिरा, जसपुर, उत्तराखंड तो। इसे गीत की फरमाइश है पिंड कुडाली, पोस्ट ऑफिस नगेंद्रा नगर, जिला तो श्री भूमि, स्टेट असाम तो हितेंद्र दास ते इन्हों का परिवार। जगमोहन सिंह अनेजा, बजरंग शर्मा, सोनू, मिंटू, करण, हरगुन, श्री गंगानगर तो। गोबिंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, पिंड लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश तो। जॉन्डी कैस्ट्रो, रोजी, पर्ल विलेस, जनकपुरी, सहारनपुर तो। जिला फाजिलका, पिंड बलजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह, बलदेव सिंह, पेंचरवाला, वड़िंगखेड़ा तो भोला सिंह, करनैल गिल ते इन्हां दा परिवार, और ये सब सुनना चाहते ने नरेंद्र बीबा होरां दी आवाज़ विच गीत। तो प्रोग्राम है धमक जलंधर पैंदी, आओ सुनते हाँ नरेंद्र बीबा ते साथियां दा गाया होया गीत।

डरता हूँ। पेशावर, मैथपुर, तो बूटा सिंह, विजयपाल, अजयपाल, पाहुल जोत, अनाहत, लवप्रीत, परविंदर ते इन्हां दा परिवार, कृष्णा पाक, दिल्ली तो सुखिंदर सिंह जोड़ा, सीटी पंखा रोड जनकपुरी तो पिंटू दीवाना, रजिंदर सिंह ओबराय। रमी हैबोवाल अपने पूरे परिवार नाल हैबोवाल कला हलका उत्तरी जिला लुधियाना तो, सिद्धार्थ नगर दरेपुर भाबली तो गजन अनियेले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक ते परिवार, आदर्श नगर मलोट तो राज, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना, दीवान शर्मा, मखु तो बिल्ला बाजार, छैपी कपूर, फिरोजपुरी ते मनीष बजाज, चकला बाजार समाणा शहर तो पप्पू राजा खुशतिल, संगीता रानी, पप्पू स्माइल खुशतिल, हसमुख, संजीव, सुनीता, आरजू, पूरा ही खुशतिल परिवार, परवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो, इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन, विक्रमजीत, अनमोल ते पवनीत, सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत, रोशनप्रीत, पिंड छाछली जिला संगरूर तो, बागा पुराना तो सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत ते पोतरा तेग फतेह सिंह, पोतरी जसकुन रखड़ा ते इन्हां दा परिवार। इसे गीत की फरमाइश है पद्मा टॉकी स्नेपा नगर तो सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि, अश्विन, बंगलाबेन ते रजिंदर जी शाह, जसपाल भारती, वीना, सुरेंद्र, मनदीप, डिंपल, युवराज, पिंड शिवाय दानेवालिया, साउथ एवन्यू अबोहर तो, हरजीत, कैंथ, मोची कलोनी डाबा लुधियाना तो, पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो, रजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता ते गीता, जलालाबाद पश्चिमी तो सुरेश, शगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी ते निमित आहूजा, भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छिंपा, कपिल ईशान छिंपा ते पूजा परिहार, टालेवाला बोदला जिला फाजिलका तो मीरचंद, नवदीप, चतरथ, अर्नव, लाजवंती ते अनीता रानी, पिंड डाकाना मिडू खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहिब तो राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा। आओ सुनते हैं सब की फरमाइश ते गीत। आवाज है सुरेंद्र कौर होरां दी ते नाल डॉली गुलेरिया।

अपना परिवार सारा। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सपल प्रभजोत ते मनजोत न्यू गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम दास सत्यादेवी वानिया पोतरा अरमान अविताज का कड्डिया भी कंगुराना ते सारा ही अंगुराना परिवार। बठिंडा रोड मंडी डावले तो रजिंदर अंजू मोहित लकी तान्या ते परिवार। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक प्रतीक अनिल जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका तो शुभ चंद्र बजाज साहिल ते बिट्टा बजाज। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू अमनजोत इंजीनियर रमनजोत ते परिवार। सादुल शहर तो वेदपाल इंदु राकेश शकीला रोहिणी अभिनव सानवी मीकू शशि बिश्नोई 29 KSD सादुल शहर तो बालकृष्ण शर्मा प्रवीण मनीष राहुल पिंड डंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू पूरा सिंह गहलोत वकील सिंह पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह पिंड लैपो गहरी तो गुरमीत सिंह पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह ते परिवार। इस गीत की फरमाइश है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी हेमलता हेना हर्षित ते खुशी गोस्वामी परिवार सारा। कुलवंत सिंह पोतरा लवराज सिंह औलख पिंड पोज के फिरोजपुर तो सुनते हैं सब की फरमाइश ते गीत आवाज़ है आसा सिंह मस्ताना होर दी। आओ सुनते हैं इन्हों की आवाज़ विच गीत। प्रोग्राम है तमक जलंधर पैंदी।

माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा ते सोनम वर्मा। पिंड चांद मारी तो मंगत राम, जगदीश, संदीप, ममता, अभिषेक, मिड्ढा ते दिव्या। भारत भूषण अंजू, देवेंदु, संस्कृति ते पौरश। मलीला फिल्म तो मदन मोहन लहर, सरबजीत संजू, नितिका अजय, लाडला पोता अर्नव लहर। पिंड हीरा वाले फाजिलका तो सुभाष, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु ते परिवार। जिला मुरादाबाद, पिंडुलापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार ते नरगिस खातून। पिंड फांसी हिसार तो राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। फतेहबाद हरियाणा तो इंद्रपाल, बिट्टू, चंचल, आंचल, गगन, प्रिंस, जीवन सिंह ते सारा ही बुक परिवार। अमरीक सिंह जलान जिला संगरूर तो, इन्हां दे साथी मैंबर ने मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत पूरबा। पिंड कैरों जिला तरन तारण तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मे, रजनी, काशी पन्नत ते पोत्रा गुरशबद। साधु शहर राजस्थान तो राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मैसकेट नाभा तो सोमदत, ज्योति रानी, कैरव, गुरमन्नत ते परिवार। जालला टाउन SPS नगर तो विनोद संधू, कमल, रितेश, आकांक्षा ते भारत भूषण संधू। गोबिंदपुरा सीकर राजस्थान तो ततार सिंह शेखावत, संगीता तुषार सिंह ते रिंकी शेखावत, उन्हां दी फरमाइश ते। आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला गीत। आवाज़ है हरदीप हुना दी, प्रोग्राम है तमक जलंधर पैंदी। आओ सुनते हैं गीत। आवाज़ हरदीप दी।

फ्रीदी, और हृदय स्नेहा है सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। वासेव छाबड़ा, अंश दिव्यांशी, चिराग साजन छाबड़ा, लालड़ू मंडी तो, मंडी अरनी वाला तो, बलविंदर बुट्टर, गोरा बुट्टर, गुरसांझ ते कुलदीप, पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो विशाल कुमार, कुलदीप, सौरभ, आरफ सेठ, रितिका, रानी तान्या, रानी कविता, सुमित ते मनी बाटला, ते इन्हां दे रिश्तेदार ने अनुरानी, भूआ सुमन राणी ते कुछ होर इन्हां दे साथी, विक्की माइल, संतोष, रोनित ते पूरा हिमायल परिवार पिंड साबण जिला फाजिलका तो, जगदीश कुमार मक्कड़, मुकेश, नीरज, भुविन ते पूरा ही मक्कड़ परिवार पिंड कबूल शाह कुब्बन जिला फाजिलका तो, एस के पुरी, बी के पुरी, रशपाल, हरीश, राजू शर्मा, सतीश पुरी, विनोद पुरी, अमर नगर लुधियाणा तो, ए ने उत्तर प्रदेश मानिया गाजीपुर तो, सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक ते स्वाति, बिपिन, देव कुमार ते आर्य कुमार जायसवाल, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मैं राजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो, आओ सुनने हैं सब दी फरमाइश ते गीत, आवाज़ है कमलजीत नीरू होरां दी।

0: ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 11:05 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ 12 ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश

0: वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से। हुण बच्चे अपना प्रोग्राम सुनेंगे बाल जगत।

0: जय हिंद।
1: लुकण मिटी ते गुल्ली डंडा किधर गुम गए खेल, नजर किते हुण आउंदी क्यों नहीं बच्चियां वाली रेल, नजर किते हुण आउंदी क्यों नहीं
0: बच्चियां वाली रेल।
1: ते लो जी बच्चियां वाली रेल आकाशवाणी दे वेड़े तो जरूर हर एतवार नूं आउंदी है और बच्चियां दे लई बहुत सारा मनोरंजन अपनी गड्डी दे विच भर के लै आउंदी है और जिस दे दो शाह सवार ने जी गुरप्रीत और सुखदीप और तुहाडे लई तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम लैके बाल जगत तुहाडे रेडियो सैट उपर हाजिर हो चुके ने।
0: जी बिल्कुल, हाजिरी लगवाउंदिया होया बहुत सारियां गल्लां बातां, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा मनोरंजन लैके आवांगे। बच्चियां दीआं हाजिरियां लगणगीआं

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: तै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे।
1: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस समय दिन दा 1 बज रहा है। आओ सुनते हैं समाचार हिंदी विच दिल्ली केंद्र तों।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
3: जनादेश 2026।
4: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
3: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
4: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
3: जनादेश 2026।
2: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
5: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश

की लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। साढ़े अज के प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा प्रोग्रामा दे वेरवे दे अंतर्गत इस तरह दैनिक वच के 15 मिनट होएगा प्रोग्राम फौजी वेरले, बाद दोपहर 2:30 बजे रंगली धरती इस अंतर्गत सुनोगे हरदेव सिंह लाल भाई कविशर ते साथियों की गाई हुई कविशरी। शाम 4 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा ते उस तों बाद होएगा पंजाबी साहित्यक पत्रिका सिरजना। अज इस विच साहित्य अकैडमी 2025 जेतू पुरस्कार हरजिंदर पाल जिंदर नाल गलबात सुनवाई जाएगी ते गलबात कीती है डॉक्टर शरणजीत कौर होरां ने। श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करो शामी 4:30 बजे ते शाम 5:30 बजे तुसी सरवण करोगे गुरबाणी विचार प्रोग्राम। देहाती प्रोग्राम दा समरेगा शाम 6:30 बजे जिस विच कम दियां गल्लां झोने दी सिद्धी बिजाई इस विषय ते जानकारी देणगे डॉक्टर राकेश कुमार। रात 7:40 ते वगदे पाणी इस विच बलविंदर सिंह होरां दा कविता पाठ होएगा। इस तों बाद तुसी कुछ गज़लां सुणोगे।

0: ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 'ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। चार रियासती असेंबलियों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के लिए कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कमीशन ने मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। पोलिंग इस माह की 21 तारीख को होगी। दिल्ली के विवेक विहार में भयानक आग लगने के वाकये में 9 अफराद हलाक हो गए। मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने निशानों में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। आज दुनिया भर में प्रेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और IPL क्रिकेट में आज से पहर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह शुरू होगी। आसाम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सिलसिले में सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सभी 126 नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती सुबह 35 अजला के 40 गिनती मराकज में होगी और इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुल 59 खवातीन समेत 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आसाम में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे और वहां 85.96% पोलिंग हुई थी। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती 77 मराकज में होगी। तमिलनाडु में गिनती के फराइज अंजाम देने के लिए 10,545 गिनती के अमले को तैनात किया जाएगा, जिन्हें 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन का ताआवुन हासिल होगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि 234 में से हर एक असेंबली हलके के लिए एक मुशाहिद इस कार्रवाई का निगरानी करेगा और कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएगा। पुदुचेरी में असेंबली चुनाव की गिनती के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी और निगरानी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। केरलम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीनियर अहलकारों ने केरलम में 140 गिनती मराकज में तैयारियों का हतमी दौर का जायजा लिया। वोटों की गिनती बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाने के लिए गिनती मराकज के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना जिले फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के तमाम अमल को मनसूख करने के गैर मामूली इकदाम किए हैं। मुआविन बूथों समेत सभी 285 पोलिंग बूथों में इस माह की 21 तारीख को दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और वजीरे आला रेखा गुप्ता ने आज सुबह विवेक विहार में आग लगने के अफसोसनाक वाकये में हुए जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। कौमी राजधानी में आग लगने के इस वाकये में 9 अफराद हलाक हुए हैं। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए फायर ब्रिगेड के अफसर मुकेश वर्मा ने बताया कि आग लगने का वाकया एक 4 मंजिला इमारत के कुछ फ्लोर में पेश आया। उन्होंने कहा कि बचाव और आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान इमारत से 15 अफराद को बचा लिया गया है।
2: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय कर

0: आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा, टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दी गई।
1: मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने अहदाफ में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। खबरों से मालूम होता है कि 7 ओपेक प्लस मुल्कों ने अगले माह तेल की पैदावार के अहदाफ में तकरीबन 1,88,000 बैरल योमिया तक का इजाफा करने से इत्तेफाक कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के ओपेक से अलायदा होने और मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान ये मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा किया गया है। यूएई के ओपेक ग्रुप से अलग होने के बाद अब ओपेक प्लस में ईरान समेत कुल 21 रुकन ममालिक हैं। पिछले हफ्ते यूएई ने ओपेक से अलायदा होने का ऐलान किया था। आज दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन प्रेस की आज़ादी के हक में इकदामात की हौसला अफजाई और फ़रोग देने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की सूरत हाल का जायज़ा लेने का मौका फराहम करता है। इस साल प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन का मौजू है पुरअमन मुस्तकबिल की तश्कील। इस साल ये दिन इजहार राय की आज़ादी की दोबारा तौसीक करने और सहाफत, टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई ज़हानत AI और इंसानी हकूक से वाबस्ता इदारों को ऐसे अमली तरीक़ेकार पर यकजा करने का अहम मौका फराहम करता है जिनके ज़रिए मुस्तकबिल में मालूमाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर और BJP के सीनियर लीडर किरण रिजिजू ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन की सभी पार्टियां सरकारी एजेंसियों, चुनाव कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया को लगातार तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और वो अब अदलिया को भी निशाना बना रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि इन पार्टियों ने ये नहीं सोचा कि वो मुल्क की जमहूरियत के अहम इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के अवाम इन्हें करारा जवाब देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय तलबा आज दुबई और शारजा के इम्तिहानात के मराकज में नीट UG 2026 कौमी अहलियती और दाखिले के इम्तिहानात दे रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए पेन और पेपर का ये इम्तिहान मुत्तहिदा अरब इमारात के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एक्सचेंज के तौर पर उभरा है। ऐसा दरामदशुदा तवानाई हर मुल्क के जबरदस्त इन्हिसार के सबब हुआ है। आसमान को छूती लागत और दरामदात में दरपेश मुश्किलात की वजह से मुल्क की नाजुक बैरूनी हालत नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पड़ रहा है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान अगर तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी रहता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात से 2-4 मईशत दोहरे हिंदसे के इफरात जर की गिरफ्त में रहेगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात की मजम्मत की है जिसमें ईरानी जहाजों के जरिए मगरबी जहाजों को जब्त किए जाने को बहरी कजाकी करार दिया गया है। बकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैनुल अक्वामी समुद्री आमदोरफ्त के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों की मुजरिमाना नौईयत का एक बराह रास्त और काबिल मजम्मत एतराफ है। इस्माइल ने बैनुल अक्वामी बिरादरी, अक्वामी मुत्तहिदा के मेंबर मुल्कों और अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अपील की है कि वो इस तरह के बैनुल अक्वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों को मामूल का बताने को सख्ती से मुस्तरद करें। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के चुनाव में वोटों की गिनती के सुपरवाइजर्स के तौर पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को तकरर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जॉय मालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने हिदायत दी है कि कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचके के तौर पर देखा जा रहा है जिसने इस कदम को चैलेंज किया है। IPL क्रिकेट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। सपहर 3:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा जबकि दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मेजबान गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कल रात चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 4 रियासती असम्बलियों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के लिए

0: होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कमीशन ने मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। पोलिंग इस माह की 21 तारीख को होगी। दिल्ली के विवेक विहार में भयानक आग लगने के वाकये में 9 अफराद हलाक हो गए। मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने अहदाफ में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। आज दुनिया भर में प्रेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज से पहर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से। फौजी वीरों, एक बार फिर आप सब का स्वागत है। सुन रहे हैं कुछ होर फिल्मी नखमे। आओ सुन रहे हैं फिल्म चोरी चोरी का गीत। गायक कलाकार मन्ना डे, लता मंगेशकर।

तो सुन रहे से फिल्म चोरी चोरी दे गीत। मन्ना डे ते लता मंगेशकर दा गाया होया। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत। मुकेश ते लता मंगेशकर नूं सुनदे हां, फिल्म है आहा।

0: की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
2: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यानम और माहे में होगी।
3: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
4: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
5: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों

0: पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
2: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
3: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके

0: मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले तीन दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से रंगली धरती आवसंध्या। इस तहत हरदेव सिंह लालबाई कविशर ते साथियों की गाई हुई कविश्री प्रसंग भूमिया चोर।
4: समुची मनुखता नूं सांझा उपदेश देण वाले साहब सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दीआं पवित्र सिख्यावां नूं याद करन तों पहलां आओ उहनां दे चरणां विच हाजरी लवा के सारे आपां अपना मुख पवित्र करिए। गज वज के

0: आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने चोरां नूं संत बना दिता, धाड़वियां ठग्गां डाकुआं नूं उपदेश दे के नेक मनुख बना दिता। तो गुरु नानक पातशाह ने मनुख नूं कहा, बंदिया तू दसां नौआं दी किरत कर, परमेश्वर ने तैनूं किरत करन लई अखां हथ पैर दित्ते ने, ते जे तू किरत नहीं करदा फिर तेरी जिंदगी तेरा जीवन पशुआं दे समान है। किरत दी महानता दा उपदेश देण वास्ते सतगुरु चलदे चलदे बंगलादेश दी राजधानी ढाके विच पहुँच गए। उत्थों दा चौधरी सी भूमियां चोर, उहदे कम बड़े माड़े ने, डाके मारदा है, चोरियां करदा है, लोकां दा कतल करदा है रात नूं, पर अपने कीते गुनाहां ते परदा पाउण वास्ते दिने लंगर लाउंदा है। गुरु नानक पातशाह उहदे घर पहुँच गए, उहने बड़ी रीझ नाल प्रशादा तैयार करके सतगुरु ते उहनां दे साथी बाला ते मरदाना वास्ते खाणा परोसिया। कहिण लग्गिया, महाराज भोजन छको। सतगुरु नानक पातशाह कहिण लगे, भाई भोजन तेरा तां छकांगे जे साडे इक सवाल दा जवाब देवेंगा। इहदा हिरदा अंदरों कंब गया, ठठंबर गया। बड़े साधू संत महात्मा आए, भोजन छक के दान दक्षिणा लैके तुरदे बने, किसी ने सवाल नहीं किया। अज पहला साधु, अनोखा साधु आया जिहड़ा सवाल करदा, कहिंदा महाराज करो सवाल। गुरु नानक पातशाह जिवें भूमिए चोर तों पुछ रहे ने, आ लंगर चलदे ने, खर्चा बड़ा भारा है, तेरी किरत दा साधन की है, कम की करदा जिथों पैसा आउंदा। आओ गुरु नानक पातशाह भूमिए चोर तों उस दी किरत बारे जिवें पुछ रहे ने, बाबू रजवली खान साहोकिया वालिआं दा सेवक जत्था उन्हां लैणां नूं कविता राहीं इउं बयान करदा है।
1: गुरु नानक जी पहुँच गए भूमि दे दरबार बने।

तो सुन रहे सी प्रसंग कुमिया चोर हरदेव सिंह लाल बाई कविशर ते साथी रोंदी आवाज विच एसी प्रोग्राम रंगली धरती।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियाँ मिठियाँ, ते मैं आरजी पूनम सेठी इस वक्त तुहाडे नाल जुड़ी हुई हाँ। हुण आपां फिरोज़ खान दे आवाज़ विच इक गीत सुन रहे सी, गीत दे बोल सी दिल दा करार, ते फिरोज़ खान दे बारे थोड़ी जी जानकारी तुहाडे नाल सांझा भी कर लेनी चाहीदी है। फिरोज़ खान एक मशहूर पंजाबी गायक ते अदाकार हन जो अपने भावुक ते रोमांटिक गीतां लई जाने जांदे ने। उन्हां दा जन्म 12 दिसंबर 1982 नूं पंजाब दे संगरूर ज़िले विच होया सी। उह संगरूर दे पिंड ढलेर विच पले हन। उन्होंने अपनी मुढ़ली सिक्ख्या पिंड ढलेर के स्कूल तो प्राप्त की, उच्च सिक्ख्या पिंड चुनेर गए। उन्होंने सरकारी कॉलेज मलेरकोटला तो ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वह अपने परिवार नाल फगवाड़ा विच रह रहे हैं। फिरोज़ खान को पंजाबी संगीत जगत के सब तो सुरीले ते सिखे हुए गायकों में एक मनिया जाता है। उन्होंने सब तो मशहूर गीतों में जमाना, तेरी सौ, जान तो प्यारा ते दिल दी दीवानगी शामिल हैं। वो अपने धार्मिक गीतां ते भजनां लई भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों जिवें कि ब्लैकिया, मन्नत ते यारां नाल बहारां विच प्लेबैक गायक वजों काम किया। साल 2025-26 विच उन्होंने मलका जमाना दो ते चढ़दी कला सरबत दा भला वर्गे नवे ट्रैक रिलीज़ हुए हैं। वो अक्सर देश विदेश विच अपने लाइव शो करते रहते हैं, जिवें कि कैनेडा के टोरंटो विच उन्हां दियां पेशकारियां काफ़ी चर्चित रही हैं।

हाँ जी दोस्तों, मैं आरजे पूनम सिटी इस वक्त तुहाड़े नाल जुड़ी हुई हाँ। प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाड़े लोगों का भी कि तुसी साडे रेगुलर स्रोते ने, सानू रेगुलर सुनते हो, रेगुलर चिट्ठियां भेजते हो, तो इदां ही साडे नाल सालां तों सालां कई सालों तो साडे नाल जुड़े हुए हो। हुण आपां हंस राज हंस की एक गीत सुन रहे सी, आ लै छला आ लै मुंदरी। बहुत ही प्यारा गीत सी, थोड़ी जी जानकारी भी तुहाड़े नाल सांझा करना चाहते हाँ। वो एक पंजाब दे मशहूर सूफी ते लोक गायक हैं जिन्हां नूं पद्म श्री ते संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारां नाल सन्मानित किया जा चुका है। मैं गल कर रही हाँ हंस राज हंस दे बारे। जलंधर दे पिंड साफीपुर विच जन्मे उन्होंने छोटी उम्र विच गाउणा शुरू किया ते उस्ताद पूरन शाह कोटी साहिब तों सिख्या लई। वो अपनी मिठी आवाज़ ते सूफियाना अंदाज लई जाने जांदे ने। 9 अप्रैल 1962 विच उन्हां दा जन्म साफीपुर जलंधर पंजाब विच होया। सूफी पंजाबी लोक गीत धार्मिक गीत उन्हां दी गायकी दी शैली है। उस्ताद पूरन शाह कोटी साहिब उन्हां दे गुरु ने ते भारत सरकार वल्लों उन्हां नूं पद्म श्री ते होर कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले ने, जिवें कि संगीत नाटक अकादमी वल्लों भी उन्हां नूं पुरस्कार मिलिया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तों उन्हां ने सिख्या प्राप्त की। जेकर उन्हां दे गायकी दे सफर दे बारे गल कीती जाए तो उन्होंने अपने करियर दी शुरुआत युवक मेलियां विच प्रदर्शन करके कीती। देखिया जांदा है कि यूनिवर्सिटी ते कॉलेज पद्धर ते यूथ फेस्टिवल्स हुंदे ने, उन्हां नूं आपां युवक मेले भी कहिंदे ने, उत्थों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्हां दी पहली एल्बम जोगियां दे कन्नां विच कच्च दियां मुंदरां सी। उन्होंने प्रसिद्ध सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान नाल फिल्म कच्चे धागे विच भी काम किया। उन्होंने अमरीका दियां वाशिंगटन DC ते सैन जॉस यूनिवर्सिटियां विच ऑनररी संगीत प्रोफेसर वजों भी नियुक्त किया गया। इस उन्हां दियां कुछ उपलब्धियां ते हुण आपां अगे वधदे हां, कुछ होर चिट्ठियां नूं पढ़दे हां ते कुछ होर गीत भी सुनांगे। चिट्ठी आई है चौधरी मार्केट अबोहर रोड मलोड तों। भेजण वाले ने कप्तान सिंह, सैकटरी शमशेर सिंह, धर्मिंदर शर्मा ठाकर ते हरफुल। इन्हां तों इलावा पिंड खैरका सिरसा तों इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी लॉट, दर्शन लॉट वालों चिट्ठी आई है। फिर श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा वालों चिट्ठी आई है। फिर पटेल नगर मलोट पंजाब तो रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया वालों चिट्ठी आई है। फिर जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पार्टी, एंजल पार्टी, नवनीत पार्टी ते पप्पी पार्टिया वालों। फिर पिंड नथाना जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता वालों चिट्ठी आई है। इन्हां तों इलावा पिंड नुकेरियां, पिंड नेड़े मंडी रोड वाली डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो चिट्ठी आई है। भेजण वाले ने कश्मीर सिंह करनावल, सुखजीत सिंह करनावल, सुखचरण सिंह बराड़।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिठियां मिठिया। मैं आरजी पूनम सेठी इस वक्त इस प्रोग्राम नु पेश कर रही हाँ। ते हुन आपां कुछ होर चिठियां भी पढ़ांगे, मगर थोड़ी जी जानकारी है इस खंग दे बारे तुहाडे नाल जरूर असी

साझा करना चाहते हाँ। एएस कंग, पूरा नाम अवतार सिंह कंग, एक प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक हन जिन्हों का जन्म शहीद भगत सिंह नगर नवां शहर के पिंड कुलथम विच होया सी। 1970 के दहाके विच यूके तो अपने करियर की शुरुआत करन वाले कंग पहले यूके आधारित पंजाबी कलाकार सन जिन्हां ने एल्बम जारी की। गिद्दियां दी रानी ते आशिक तेरा वर्गे गीतां नाल उन्हां ने संगीत जगत विच वड्डा नामना खटिया। उन्हां दे कुछ मशहूर एल्बम ते गीत सन जिवें कि गिद्दियां दी रानी, आशिक तेरा, लंबड़ा दी नौ नचदी, ऐश करो। 1995 विच एशियन पॉप अवार्ड्स विच 5 पुरस्कार जीते जिन्हां विच सर्वोत्तम पुरश गायक ते सर्वोत्तम एल्बम शामिल सन। उन्हां नूं किंग ऑफ बोलियां वजो भी जाणिया जांदा है। एएस कंग ने चरणजीत आहूजा ते केएस नरूला वर्गे मशहूर संगीत निर्देशकां नाल काम कीता ते ओह भारत विच रिकॉर्डिंग करन वाले पहले यूके कलाकार सन। ए सी एएस कंग। हुण आपां कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़ांगे। चिट्ठी आई है महाराष्ट्र तों। भेजण वाले ने मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो भेजण वाले ने अभिजीत ग्वानकर राही, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत ग्वानकर, परिणता ग्वानकर, उन्होंने सज्जन मित्री ने इको चिट्ठी च उन्होंने अपने दोस्तों के नाम भी लिखे ने। अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो विशैली शैलेश ग्वानकर, श्वेता सुमित ग्वानकर, कुमारी धोनी ग्वानकर जिन्हों प्यार परी भी कहते हैं, तो लाडला टुक टुक ग्वानकर, बहुत ही प्यारा नाम है परी ते टुक टुक। फिर चिट्ठी आई है मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, मट्टू जैन, बिट्टी जैन, दीपक जैन, राजा जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, बर्गर जैन, रबड़ी जैन, टीटू जैन, नगीना जैन ते विकी जैन वालों। फिर जिला फाजिलका पिंड कुड़ियाना तो भोला सुवाख, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, पोतरी रितमनजोत, पोतरा गुरतेश्वर, अभिजोत गुरताज, दोस्त बलतेज सिंह कुड़ियाना, आर पी सिंह, निहाल खेड़ा, ज्ञान चंद कंबोज अरनीवाला, विछड़ी रूह सिकंदर सिंह सुहाग, प्यार भरी सत श्री अकाल जी, गीत भी कोई भी सुना दिओ। हाँ जी जरूर सुनावांगे असीं तुहानू। फिर टालीवाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर हरजिंदर, गिद्दड़वाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा। फिर चिट्ठी आई है श्री करनपुर राजस्थान तो शिव कुमार सेठी, सुनील सेठी, कमल सेठी, ज्योति सेठी, शब्द सेठी, वानी सेठी ते राजू टुटेजा। इन्हां ने आसा सिंह मस्ताना का गीत सुनने की इच्छा रखी है, आपां तुहानू जरूर सुनावांगे। इस गीत तो बाद असीं इस चिट्ठी नू जरूर अटेंड करांगे। आसा सिंह मस्ताना के गीत तुहानू जरूर सुनावांगे। फिर चिट्ठी आई है पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बुक, निशान सिंह बुक, सीरत कौर, कीरत कौर, अमर लाल, दादी जसवंत कौर, बलविंदर कौर बूक, सुरिंदर कौर बूक, राज सिंह मिस्री, पिंड माहुआना, बोदला ढानी, नेड़े अरनी वाला, अमर लाल। फिर गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा वालों। अच्छा एक चिट्ठी जी आई है मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज, ए हुसन जवानी मालो माल जड़ा गीत है हरभजन मान की आवाज़ में सुनना चाहते हैं, आपां तुहानूं ये गीत जरूर सुनावांगे, आओ सुनते हैं गीत।

आई है कृष्णा गोपाल शर्मा, बिट्टू जैन, टीटू जैन ते जेबी राव वालों मुल्लापुर दाखा मंडी तो। फिर पुरानी मंडी मुल्लापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, आकाश जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, नगीना जैन वालों। फिर मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन, मनोज जैन, समता जैन ते मोनू जैन वालों। फिर मलोट कैंप तो सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, विवान गुरचरण ते वीर सिंह लाठी वालों। फिर श्री करनपुर राजस्थान तो शिव कुमार सेठी, सुनील सेठी, कमल सेठी, ज्योति सेठी, शबद सेठी, बानी सेठी, राजू टुटेजा वालों। ये आसा सिंह मस्ताना का गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है। इधर कनका उधर कनका नू सुनना चाहते ने असी तुहाड़े लई ये गीत सिलेक्ट कर लिया है, हुणे तुसी सुनोगे थोड़ी देर च ही। इधर कनका उधर कनका आसा सिंह मस्ताना की आवाज़ में।

हाँ जी दोस्तों, मैं आरजी पूनम सेठी इस वक्त इस प्रोग्राम में पेश कर रही हूँ। प्रोग्राम का नाम है चिट्ठियाँ मिठियाँ। सिर्फ 10 मिनट रह चुके हैं, 10 मिनट कुछ सेकेंड, तो प्रोग्राम नूं असीं हजे भी अगे वधा रहे हैं। हुणे आपां आसा सिंह मस्ताने दे आवाज़ विच गीत सुने सी, इधर कनका उधर कनका, बहुत ही दिल नूं छू लैण वाला गीत सी। आसा सिंह मस्ताना दे बारे कुछ जानकारी तुहाडे नाल सांझा कर लैंदे हां। पंजाबी लोक गायकी दे बहुत ही मशहूर ते सत्कारत थम सन। उन्हां दी मिठी ते दमदार आवाज़ ने पंजाबी संगीत नूं विश्व पद्धर ते पछाण दिवाई। आसा सिंह मस्ताना, उन्हां दा जन्म 22 अगस्त 1927 नूं पिंड शेखूपुरा, जो कि हुण पाकिस्तान विच है, माता अमृत

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसे तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इनफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगदा। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। इस समय शाम दे 4:30 होए ने। हुण असीं तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चल रहे हां, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

सिर नाही दातार अपना नाम देह, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह। ए फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों उचारित है। पंचम गुरदेव अकाल पुरख के चरणों विच

बेनती करदे ने कि हे दातार प्रभु, मैनू अपने नाम दी दात बख्शो, मेरे ते किरपा करो कि मैनू आप जी दा नाम कदे ना विसरे। मेरे मन विच यही उमंग है, यही चाह है कि मैं आप जी दे गुण गायन करदा रवां। बेशक प्रभु दे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, उस दे गुण गायन भी नहीं कीते जा सकते, पर अकाल पुरख जेकर आप किरपा करे तां ए संभव हो सकता है। क्या गुण तेरे सार संभाली, मोह निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बैखरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु प्यारे जन गुरमुख जन उस परवरदिगार दी भगती विच लीन रहिंदे हन, सदा उस दी उस्तत करदे रहिंदे हन, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

अत्यंत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूरब करम लिखे गुण गाओ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई दर्शन सिंह कोमल ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स से FM 100.8 मेगाहर्ट्स से FM 100.9 मेगाहर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम दे 6 बज रहे ने। हुण तो थोड़ी देर बाद साडे दिल्ली केंद्र तो पेश कीतियां जाणगियां हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें

0: सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार।
3: एफएमएल 100.6 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी के जलंधर केंद्र है। मीडियम वेव 343.6 यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्रामा उन्हों का प्रसारण समा कुछ इस तरह है।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आओ हुण सुणदे हां समूह गान

0: हाँ जी तेजा सिंह जी, देखो आज समाज दा पसारे जानने हाँ कि झोने की फसल अपनी
1: आह
0: मुख्य फसल है
1: बिल्कुल जी
0: सौनी
1: बिल्कुल
0: दे विच,
1: जी
0: ते इहदे च ये है कि माहरां वल्लों सरकारां वल्लों सीधी बिजाई ते बहुत जोर दिता
1: बोर
0: जा रहा है,
1: बिल्कुल दिता जा
0: क्योंकि
1: रहा
0: जिदा कहने कि अखीरी फायदा तां किसान दा है
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जिन्हों आप DSR भी कह दें।
1: आह
0: सो इस करके ये बड़े सारे फायदे है झोने
1: आह
0: की सीधी बिजाई के बाबत डॉक्टर राकेश कुमार होना को जानकारी साझा की आप साझा करते हैं।
1: जरूर जी जरूर
2: DSR है की चीज़? सब तो पहला तो गल ही आ जाती दिमाग से भी DSR एक अंग्रेजी का टर्म है, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। इसनों जो आप पंजाबी जो अपना लोकल लैंग्वेज गल कर लिए इनू आप कह सकते हैं झोने की सीधी बिजाई। तो यदा मतलब की है जो आप कह दिए बी देसी वाजा इसका मतलब कि निकल जो आप कणक की बिजाई जिम्मे झोना वढ़ के आप कणक की बिजाई खेत के सीधी करते सीगे उदा ही आप नवी तकनीक कढ़ ली हैगी कि बी झोने तो भी आप कणक वांगू ही खेत के सीधा बीज सकते हैं। ये आप सू पनीरी जिमें पहले पुराने टाइम तो आप पनीरी ला के एक थान पनीरी लाते पट के फिर आप जो खेत के लाते उसको ट्रांसप्लांटिंग मैथड कहते हैं। कुछ औकड़ा सी कुछ कुदरती जिमें बदलाव आ रहे हैं उन्होंने पूर्ति करना कुछ कुछ समस्यावं आई तो यूनिवर्सिटी ने इस पर खोज किया बी क्यों ना अपनी कोई नवी तकनीक की जाए ईजाद की जिदे झोने की लागत भी घटे किसानों का उपज के नुकसान ना हो अपने कुदरती सोमे जोड़े बचे रहन। तो कुछ एक जे आप झोने की सीधी बिजाई की गल कर लिए तो फिर किसान वीर थोड़े उपर सवाल आ जाता भी किसान इसनों अपना क्यों, क्योंकि हरेक चीज़ कोई भी काम करने तो पहले आता क्यों क्यों दा जाता क्यों दा ये कि जो आप गल सुन रहे हैं आप जो बजुर्ग सीगे साढ़े कदे नहीं कहते सी पंजाब दे विच भी पानी की कमी आ सकती है। तो कुछ एक साढ़े कुदरती सोमे जोड़े झोने लवाई करके थोड़े डाउन हो रहे हैं उन्होंने ये सोने की सीधी बिजाई है इसनों टाकरा मारन की समर्था रखती है जिमें कि पानी हेठला पानी जोड़ा पद्धर डाउन जाना जोड़ा अपनी जब आप झोना लाते हैं तो उस टाइम पर सूँ लेबर की बहुत खास लोड़ पैंती है उस टाइम के पीक टाइम पर लेबर नहीं मिलती हूँ जोड़े प्रवासी मजदू लेबर आते सके वो भी साढ़े घट गए हैं रेट दिनों दिन वे जा रहे हैं। उस तो बाद जो पीक टाइम पर सूँ मोटर चलानी पैनी है जितने बोर चलते हैं पानी जितों लगा रहे आप तो उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन साड़ी प्रोडक्शन की गल करिए बिजली की वो उतनी है। उस तो बाद जो अपना कि कल्टीवेशन कॉस्ट जी बहुत ज़्यादा लागत वध रही है हरेक चीज़ की उसनों भी घटाने में मदद करती है। तो ला अंत जी ये भी हो जाता कि भी जरा अपना जे अपना गल कर लिए जो आप कद्दू करके झोना लाते जिमें अपने ट्रांसप्लांटिंग मैथड के होंगे सी आप बार बार उसको अच्छी तरह चरण करते तो सॉयल का स्ट्रक्चर जो मिट्टी का अपना स्ट्रक्चर है वो टुटता जा रहा है वो आप रेतलेपन जा रहे थे पर जो आप झोने की सीधी बिजाई तकनीक अपना के करेंगे तो आप उस पर भी ठल पा सकते हैं। फिर किसान वीर जो आप गल करते हैं कि भाई ठीक है यदि लोड़ है तुहानू करनी चाहिए है पर ये कुछ एक जरूरत है जो भी कोई नवी तकनीक आती है तो उसको किस ढंग नाल आप अपना सकते हैं लोड़ होंगी है उस लोड़ दो पूरा करेंगे ता ही वो तकनीक सक्सैसफुल है। यदि लोड़ा की है DSR की जो आप कह दी झोने की सीधी बिजाई की सब तो पहला तो तुहाडा खेत जो लेज़र लैवल्ड होना चाहिए जो आप अज की गल करिए तो पंजाब दे विच 90% तो ज़्यादा एरिया अपना लेज़र लैवल का तो एक वो समस्या जी सी पहला जो स्कीम जी तकनीक प्रचलित नहीं हो पा रही थी भी DSR की कि भी लेज़र लैवल खेत नहीं सके तो वो हूँ वो दिक्कत पूरी हो चुकी है। दूसरा है कि ये आप जी वो वरायटियाँ लेनी है कि जी शॉर्ट ड्यूरेशन हो कम टाइम तो पक तैयार हो जाए। दूसरा ये अपना जो बीज की लोड है मात्रा है वो आम जवा रवायती ढंग जो ट्रांसप्लांटिंग मैथड वो ज़्यादा पैंती है तो अपन उस हिसाब से अपने बीज की तैयारी करके रखनी है। फिर ये आप कुछ जिमें बीज सो तो आप दूजे जो पनीरी लाते भी करते पर खास जरूरत है कि आप अपना बीज में चंकी तरह शोध करके लाइए जिमें कि पोटैशियम नाइट्रेट जो कार्ड क्ढ़ी है पिछले कुछ साल यूनिवर्सिटी ने पोटैशियम नाइट्रेट 2% गोल के 12 घंटे भिओ के उसको रखिए तो ये जो जर्मीनेशन के बहुत वधिया वाधा देती है जिड़े कि आप DSR विधि झोने की बिजाई करते हैं। इसनों जो भी आप सोक कर लिया सीड भिओ लिया उसनों छावें सुखाना 2-3 घंटे फिर उस तो बाद बिजाई करनी है। सुखाण तो पहला भी ये आप 3% स्प्रिंट नाल भी इसको 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ट्रीट करके फिर बिजाई करनी है। इस तो बाद जो है कि ये सोइंग ये कुछ एक जरूरत इस तरीके की सोइंग जी बिजाई आ बिजाई उस ढंग नाल करनी है कि जी सा वत्तर है जी मैं गल तुहाडे नाल अगे करांगा सांझी कि नवी पत्तर जिसनों कह दी नवी इसकी उड़े ना घटे ना उस ढंग नाल उस तरीके नाल अपनी व्योतबंदी करनी कि भी साडा या तो बिजाई सवेरे के टाइम हो या शाम के टाइम हो। फिर अपनी गल आ जाती किसान वीरों चलो

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ ते FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 8 बज रहे ने, पेश है प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली।
3: मैं सोहन कुमार हाजर
5: ते मैं प्रभजोत वी हाजर जी, नमस्कार।
3: नमस्कार मैडम, तुहानू वी बहुत बहुत नमस्कार ते साडे सारे श्रोतियां नू वी प्यार भरी नमस्कार जी।
5: नमस्कार जी तुहानू वी, ते सुनाओ की हाल चाल ने।
3: बहुत वधिया मैडम, अज दिन बड़ा शुभ है।
5: अच्छा जी,
3: जी
5: किद्दां?
3: अज है
5: मेडे ते इक होर दिन वी है।
3: एक होर दिन भी है,
5: ते आज हैगा बुद्ध पूर्णिमा।
3: बुद्ध पूर्णिमा दा त्योहार आज मनाया जा रहा है।
5: बिल्कुल, और देखो जी, ए दोनों दे जड़े दिन ने बड़े खास दिन ने, और असी इस खास दिन दिया मुबारकां भी दिन्ने आ सारे सुनन वाले नू।
3: जी देखो, मई दिवस जड़ा मनाया जांदा पूरे विश्व दे विच, इस दिन मजदूरां दे हक्कां दी गल कीती जांदी।
5: जी जी देखो, हर बंदा ही, मैं ते कहनी हां मजदूर है, क्यों सोन जी?
3: जी
5: जेड़ा भी काम करदा है और जेड़ा भी वेतन लैंदा है ओ मजदूर है।
3: खास तौर ते जेड़े ओ मजदूर ने जेड़े अपने शारीरिक ताकत दा काम करके इस्तेमाल करके उस नूं इस्तेमाल करके कोई काम करदे ने, फैक्ट्रियां विच काम करदे ने, इंडस्ट्री दे विच लेबर दा काम करदे ने जां होर कोई काम करदे ने, उहनां वास्ते पहलां इन्नियां सहूलतां जां इन्ने प्रोविजन कानूनी तौर ते नहीं सन
5: जी।
3: इस दिन उहनां दे जिहड़े है हक्कां दी गल कीती जांदी है, इस करके तां कि उहनां दी लाइफ भी जिंदगी भी सुखाली होवे।
5: बिल्कुल जी, और अज असीं पूरा दिन भी इस ते प्रोग्राम भी करने ने, और मेरे ख्याल साडे सुनन वाले जरूर सुनणगे साडे प्रोग्राम्स
3: जी। ते इस दे नाल नाल बुद्ध पूर्णिमा है
5: अज।
3: देखो धर्म बहुत सारे ने दुनिया दे विच, सारे धर्म सानूं आपस दे विच मिलजुल के रहना सिखाउंदे ने।
5: बिल्कुल जी, और मिलजुल के रहांगे तां ही असीं तरक्की जिहड़ी आ उह कर सकदे आ
3: जी। असीं तरक्की करांगे, साडा देश तरक्की करेगा, साडा समाज तरक्की करेगा, ते असी होर अग्गे वध जावांगे
5: जी। ते फिर अग्गे वधन दे नाल नाल सिलसिला शुरू करिए जी।
3: जी
5: पहला अज लैने आ सोन जी चिट्ठियां।
3: चिट्ठियां हां जी,
5: ते ईमेल लवांगे बाद विच
3: जी।
5: ते लो जी, सब तो पहला ही असी लैने आ पिंड चतरा, तहसील फिरोजपुर, जिला

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 20 मई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटन्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद EVM के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने

0: पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रेंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
3: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
4: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
5: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
5: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित

0: ब्लैक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो

0: और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And now the news in detail. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry to be held tomorrow. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. In West Bengal, counting will take place across 77 centres. We have more from our correspondent.
2: After an intense campaign and record voter participation, all eyes are now on tomorrow's verdict, which will decide who governs West Bengal for the next 5 years. According to the Election Commission, postal ballots will be counted first, followed by electronic voting machines in multiple rounds. Results for 293 constituencies are expected through the day, while the remaining Falta constituency will go for the fresh polling later this month. Central forces, state police personnel and election

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
1: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।
2: ये आकाशवाणी है।
1: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है। जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थीं, तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौके और बैठक तक पहुंचाया।
3: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
4: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अक्षय रखना होगा।
1: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार

0: और लेखक विजय दत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
1: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियाँ ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुँचाता रहा है।
2: कई साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका ममता कालिया अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं,
3: मुझे सन 50 का जमाना याद आ रहा है जब मैं 9 साल की थी। मेरे पिता ने तब आकाशवाणी ज्वाइन किया। मेरे पिता का नाम था श्री विद्या भूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भी रेडियो में थे, उनका नाम था श्री भारत भूषण अग्रवाल और विख्यात कवि थे वो। और मेरी साहित्य की यात्रा में रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और देखो, रेडियो कहता था इस बार कविताएं ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप कविताएं लिख के लाइए, तो रेडियो की वजह से मैंने 10-10 कविताएं लिख दी। मेरी भाषा में जो आज सरलता है जिसके कारण शायद लोग पढ़ लेते हैं मुझे, मुझे याद है कि बचपन में जैनेन्द्र कुमार तक ऐसे थे कि वो अपनी कहानी लिख के पापा को दिखाते थे कि देख लो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई तो मैंने डॉक्टर फॉस्टस मार्लो का जो प्ले है दिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ था कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दे।
0: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
4: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गानों पर, लोकगीतों के बड़ी बहार थी साहब, इसमें साहित्य भी कहीं होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो तब पता चला जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा कि जब कि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा, रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया, इसमें फिर ऑडिशन होता है, कहानी हमारी उनके पास थी, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है अब और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने में बुलाया जाने लगा वहाँ, तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है, जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
2: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा, आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
0: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्व भाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है।

0: और ये सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्वभाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्ला अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
1: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ये आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी नहीं। तो जो कविता हमारी चुनी गई थी वो कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
0: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
2: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहती है। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
0: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था।
3: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
0: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
4: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूँ। आकाशवाणी ने मेरी आवाज को, मेरे तलफ्फुस को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला है उसको जो परिमार्जन किया है आकाशवाणी ने ही किया है। आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ फिर युवावाणी में भी मैं काफी काम किया हूँ एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बंबई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहां जाता रहा। तो ये नशा जो है ये खत्म नहीं हो सकता, श्रोताओं के दिमाग से भी ये सबसे बड़ी बात है।
0: एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक पहुंची।

0: हम दोनों भाई जो है वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती। ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए नहीं, यानी यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देकर के जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
1: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं, चाहे ध्रुपद हो, खयाल हो या ठुमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
2: ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना संबंध है मेरा। मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ ग्वालियर से आता था यहाँ। उस वक़्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो ऑल इंडिया रेडियो के, 150 रुपया मिलता था। अर्ली 60s की बात है। That was the highest fee of All India Radio, top grade musicians.

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने यह साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
2: 2:30 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था। अब वक्त बदल गया होगा शायद, वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारी लाल जी को भी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में के स्वर आरोह अवरोह पकड़ो फिर एक वो। बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
0: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हों, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई।

0: भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
1: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला। रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हफीज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बाल सुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्या वंदनम श्रीनिवास राव, टीके गोविंद राव, यमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। ये तरह वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में और चेन्नई में एक कर्नाटक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, यमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया, और बहुत सारे गेस्ट कंडक्टर्स जैसे पंडित रविशंकर जी, वायलिन विद्वान लालगुड़ी जयरामन, टीवी गोपाल कृष्ण जी, बहुत सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है।

0: song.
1: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
0: Those were such happy times and not so long ago.
1: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
0: But they're back again, just like a long lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइनकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट्स, या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट्स, और प्रस्तुतिकरण का अंदाज, एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है, वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्यप्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। द रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
4: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
2: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हों या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
0: आकाशवाणी के आर्काइव्स आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक हैं। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
2: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान शैली, आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया। लेखक, कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
5: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी उनकी संस्कृति को पहुंचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुंचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुंच है। भारत की पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का, नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए ही हैं। तो ये इतना बड़ा काम सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
0: जाने माने साहित्यकार, व्यंग्यकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
6: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं। शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत, वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था। नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाह गाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी।

0: अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबब है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरीके से।
1: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति। आकाशवाणी, आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय,
4: आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय। प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है नीरज मिश्र का सितार वादन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक नीरज मिश्र बनारस घराने की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका प्रवेश मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब उन्होंने अपने पिता और गुरु सुप्रसिद्ध सितार वादक अमरनाथ मिश्र से सितार वादन की विधिवत शिक्षा आरंभ की। गहन प्रशिक्षण के पश्चात नीरज मिश्र ने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सितार में स्नातकोत्तर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल की डिग्री हासिल की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार नीरज मिश्र ने देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा महोत्सव, ICCR संगीत समारोह प्रमुख हैं। उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी सितार वादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत की है आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार देव नारायण मिश्र ने। नीरज मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग दरबारी में आलाप, जोड़ और झाला से कर रहे हैं। विलंबित मसीद खानी गत, मध्य लय और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स एडिशन ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय नीरज मिश्रा, अ डिस्टिंग्विश्ड एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड सितार माइस्ट्रो representing the rich cultural and musical heritage of renowned Banaras Gharana. Born in Varanasi, Neeraj Mishra's formal initiation into the world of music began at early age of 5 under the able guidance of his father and guru, Amarnath Mishra. Later on, Neeraj Mishra earned his Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti and completed M.Muse in Sitar from Banaras Hindu University and M.Phil from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. An A-grade artist of Akashwani, Neeraj Mishra has performed in various prestigious festivals across India and abroad, such as Sankat Mochan Sangeet Samaroh, Kashi Ganga Mahotsav, Taj Mahotsav, Kabira Festival, ICCR Horizon Series, World Cultural Festival in India, and has captivated audiences across Europe, Middle East, Italy, Switzerland and France. In tonight's program,

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत तीन ताल में, मध्य लय एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग बागेश्री। विलंबित मसीद खानी गत इज इन तीन ताल, मध्य लय is in ek taal and drutgat is set to teen taal.

0: राग बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री, नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी

0: के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टू नाइट्स रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा अकम्पनिंग हिम ऑन तबला वॉज देव नारायण मिश्रा रिकॉर्डेड अर्लियर एट आकाशवाणी वाराणसी दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच

सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी दोस्तों, सिले सिले आउंदी हवा उक ते रोंदा होवेगा। बिल्कुल ठीक गल है जी। और देखो ये मौसम जड़ा है, किसी वेले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हुण थोड़ा मौसम जड़ा है वो सुहावना हो गया, यानी कि किते किते किणियां पै रही ने और उस दे नाल मौसम दे विच जड़ा टेंपरेचर एकदम बढ़ गया सी उहदे विच हुण ठंडक जी महसूस होंदी है और फिर चंगा लगता है ना जदों इस तरह का मौसम बन जाए। लो जी देखिए जी, साढ़े दोस्त पहुंचे ने, गलबात कर देना दे नाल। हैलो, सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं संतोष, मैं केरल से बोल रहा हूँ सर।
0: अरे संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में
1: सर। एकदम आप भी सर, आप मेरा फोन अटेंड कर लिए सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हंसना चाहिए, और हंसने में सर बिंदास रहता है इंसान सर।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए जितना आप हंसेंगे ना उतना ही आपका जो ब्लड है, खून है, वो बढ़ता है।
1: ये सर कभी भी नहीं, इंसान से है ना कभी भी बात करना चाहिए, हंस के बात करना चाहिए। कोई भी हंस के बात करता है सर बिंदास आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता सर। आज है और मेरा अंकल है जो ज्ञान सिंह पिंडा है, उसके कोई भी फरमाइश से आप है ना कोई भी कम सुना दीजिए सर।
0: अरे क्या बात है, मतलब खिंडा जी, खिंडा जी के लिए कोई भी गीत सुना दें हम।
1: सर कोई भी सुन रहा, मेरा अंकल है और मेरा उस समय मेरा उम्र उस समय 10 साल था।
0: अच्छा,
1: मैं और अभी मेरा उम्र 47 साल है सर।
0: वाह वाह वाह, इसका मतलब ये है कि आप 37 साल से अपना खंडा जी के साथ।
1: मैं क्या बताऊँ, ये मेरा अंकल है, ये ना अपना है ना पहले बलवीर अंकल है ना, आपको मालूम बलवीर अंकल, ये एक कपूरथला से।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: मैं उसमें मेरा उम्र है, उसमें मेरा उम्र 11 साल था।
0: तो आपका तो बहुत सारा दोस्तों के साथ जो है वो मित्रता रही है, तो ये हमारे लिसनर्स रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। खिंडा जी का तो अभी फोन आया था संतोष जी, तो इन सबके लिए गीत कौन सा सुनाएं आज
1: आप है ना, जो कोई भी सॉन्ग सुना दो जो मेरा अंकल का और जो सभी को जो पसंद आए,
0: सबको पसंद आएगा,
1: ये आपका कोई भी फरमाइश अच्छा लगेगा
0: जी। सुनाते हैं संतोष जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: आएंगे सर।
0: ओके जी, ओके ओके ओके, बाय।

0: जी दोस्तों, सचमुच खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल किसी दा दुखायो ना। ये तो गल बिल्कुल सही है ना, जे तुसी किसी दा दिल दुखा लैंदे हो ना, तो थोड़ी देर लई तो तुहानूं अच्छा लगदा होएगा कि असी किसी दा दिल दुखाया, पर बाद दे विच तुसी अपने आप महसूस करोगे कि यार ये मैं चंगा नहीं कीता। क्योंकि जदों तुसी किसी दा दिल दुखाने हो ना, समझो वो रब सोहणे नूं तुसी परेशान कीता है, उसनों दुख देता है, क्योंकि हर इंसान दे विच रब वसदा है। और जदों तुसी किसी दा दिल दुखाओगे तो उस सोहणे रब नूं भी परेशान करोगे। मैनूं उम्मीद है जी कि हमेशा ही चंगा सोचो ते चंगा ही करो। लो कॉलर आए ने, देखिए जी कहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हेलो श्याम शर्मा जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: डेरा कॉलोनी फाइल का तो धर्मा सागर बोल रहे हैं सर जी।
0: जी, धर्मा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत ताड़ा भी शुक्रिया, बहुत बहुत।
0: सुन रहे हो प्रोग्राम शुरू तो?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चंगा लग रहा है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी।
0: आज फिर कड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: गीत नरेंद्र बीता का सुना दे सर जी, मैनू रेशमी रुमाल वांगू रख मुंडिया।
0: हाँ बिल्कुल जी, रेशमी रुमाल मंगू रख मुंडिया, ये मुंडे ने तो रखना ही है, पर आप सारे ने अपने आप में जरूर इसी तरह संभाल के रखना है।
1: ओके,
0: शुक्रिया, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनाने हैं जी तुम्हें गीत।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल सही कहा जी, कि ये जड़ी माता है ना, इस दियां हर चीज़ां याद आंदियां ने, चाहे वह आटा गुणदी होवे, चाहे तुहानू प्यार दे नाल रोटी खवाउंदी होवे। और जदों तुसीं छोटे छोटे हुंदे सी, किवें तुहाडे प्यार दे नाल तुहाडे मूँह दे विच जिहड़े छोटे छोटे निवाले वो तुहाडे मूँह च दंदे हुंदी सी, लेकिन जदों माता जी नूं लोड़ पैंदी है, कि जदों तुसीं वड्डे हो जाने हो ते माता जी बुजुर्ग हो जाते हैं, उदों तुसीं माता जी का किन्ना ख्याल रखते हो, ये एक बहुत ही सोचण वाली गल है। जे तुसीं माता जी पिता जी की सेवा करते हो, यानी कि फिर तो समझ लो तुहानूं परमात्मा नूं भी तुसीं पा लिया, परमात्मा की भी सेवा कर ली। मदर्स डे भी आने वाला है, इस करके तुसीं सारिया ने माता जी की जिन्नी ज़्यादा सेवा कर सको उन्नी घट है। लो जी कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च, कौन बोल रहे हो? जी जी प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। हाँ देख लो बिट्टू, फिर मंगया गया जी, देख लो बिट्टू भाजी हटदे नेगे। देखो ना, अपने हरेक का दम नहीं हुंदा बार बार मंगना है। ये भी
1: अपने आज आवाज सुनदा लड्डू जरूर लै जावे, सारे जिन्ने भी साडे परोसे सुनदे ना, सारे वास्ते लड्डू लै के उन्हें आने चाहिए, उन्हें पार्टी जरूर दे।
0: हाँ बिल्कुल जी, बिट्टू भाजी ने पार्टी रख लेनी है, क्योंकि वो तो हमेशा कहते मैं पार्टी देने नूं तैयार हां, तुसीं आ जाओ सारे जाने फटाफट। हरचरण ग्रेवाल ते सुरिंदर कौर दी आवाजां दे विच जी, इक तारा वजदा नूर महल दी मोरी। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਲਓ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल। ये जड़ियाँ रब ने बनाइया जोड़ियां ना, ये आप ही रब पहले ही सोच लेंदा कि मैं जोड़ियां किवें किवें किदा किदा बनानी है, ते आपे फिर तुहानू मियां जी टक्कर जांदे ने और सुहाणी भी। और ये रब ने जदों जोड़ियां बना देनी है तो फिर आपां सोच नहीं सकदे भी रब ने किन्नियां सोहणियां सोहणियां जोड़ियां बना दिंदे ने। ते अज भी जोड़ी बनी हुई है, पर साडे को कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो।
1: हेलो भाई,
0: ओ नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कौन दोस्त बोल रहे हो, पहला दसो, तारुफ करवाओ। हाँ
1: जी शांता जी, बिट्टू बोल रहा है, दूरदर्शनी बैक चैट मंगू सी अंदर
0: से। वाह जी वाह, बिट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। देखो थोड़े लिए तो फिर अज बिट्टू भाजी मंगे गए नहीं तो पार्टियां ही पार्टियां हो गई अज दे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, पार्टियां पहुंच गई मेरे को, रसगनिया ने पहुंच गया, प्रीतम भाजी भी आ गए, जस भाजी
0: देखो तुहाडे कोल शगन दे लिफाफे आ रहे ने अज, धड़ा धड़ धड़ा धड़। ते तुसीं हुण पार्टी दा इक दिन इन्हां नूं दस दिओ सारिआं नूं।
1: हां जी पार्टी सारे, हां जी सारे
0: सारे यार, बिल्कुल। हाँ देखो ना, ये शगन का दिन है, बिट्टू भाजी मंगे गए ने ते पार्टी रखी गई है, ते तुसी सारे जाने पहुंचो।
1: वाह बहुत वधिया लगदा जी, बहुत ही प्यार बनिया होया साडा परिवार एक
0: जी, बिलकुल।
1: यश भाजी आंदे लेट
0: रौनक लगा जांदे ने, ते अज देखो ना किदा रौनकां ला गए ने, ते ओह कहिंदे जी कि अज आपां गीत वी इदां दा सुनना कि बिट्टू भाजी जिहड़े है ओह पार्टी देण, ते क्योंकि ओह मंगे गए ने, ते अज फिर तुसीं किवें सारिआं नूं
1: दवांगे जी आपां,
0: अज सारिआं नूं तुसीं किदां नचा रहे हो?
1: बिल्कुल जी, अज ला दे फिर मनजीत आणगे जी साडी,
0: अच्छा
1: जी है ते मां वी साडी भाजी वी है,
0: अच्छा
1: बिट्टू
0: जी तुसी पार्टी रख लो तैयार, असीं सारे जणे नचण नूं हो गए तैयार।
1: ठीक है जी, ओके जी,
0: शुक्रिया जी कॉल दे
1: लई। ठीक है, सारे मुबारक जी,
0: मुबारक जी, मुबारक जी।

0: जी दोस्तों, मैंने लोगों दी वधाई काका जम पिया। गल तो सही है जी, देखो वधाइया मिलदिया पईया ने, ते रसगनिया साहब ते देखो वधाइया भी लै गए, ते पार्टी दी हले भी इंतजार हो रही है सारे दोस्तों वालों, ते कदों पार्टी आएगी। पर साढ़े अज बिट्टू भाजी मंगे गए ने, ते इन्हां लई पार्टी तैयार हो। कहिंदे जी तुसीं हुक्म लाओ कदों पार्टी तुसीं लैणी है, आपां पार्टी देण नूं तैयार बैठे हैं। पर कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हेलो श्याम सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर मैं रिकेश भगत जी अंदर बोल रहा।
0: जी जी रिकेश भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू सर।
0: भगत जी बहुत देर बाद साडे कोल तुसी पहुंचे हो, बड़े दिनों बाद, यानी कि काफी दिनों बाद कॉल लगाई है या बिजी सी या?
1: नहीं सर, वैसे मैं काफी देर बाद
0: प्रोग्राम तो रोज सुनती हूँ ना।

0: जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, दस दियो तारुफ भी करवाओ अपना हूं।
1: हाँ जी, वो कहेंगे ना लोगों को बोलने दो, है जी, असि रात को रेडियो सुनने दो सामने।
0: अच्छा
1: रात को रेडियो सुनो, लोगों को बोलने दो।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये गल सही है।
1: हाँ जी, मैं बंसी लाल, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अंबाला जी।
0: वाह जी वाह, बंसी लाल जी स्वागत है एक बार फिर थोड़ा।
1: हाँ स्वागत, मखा भाई तुसी कहंदे फिर मगरा नहीं होना, चल फिर आए हैं दोबारा, सही और क्या।
0: हाँ ये तो गल सही है ना, देखो यही तो गल है, जदों तुसी आने हो तो साड़ी जदों बंसी बजाने हो सानू बहुत बढ़िया लगता है।
1: भाई देखो प्यार नाल प्यार है बंदे का नहीं।
0: हाँ ये तो गल सही है जी,
1: किसी के दरवाजे से जाइए आगे जाके कोई मुंह गल ना बोलना, फिर मुड़के जाऊंगा कोई
0: ना जी, ना ना ना ना ना, ना। यही तो गल है, जदों जदों तुसी हस के खिड़े मत्थे मिलदे हो जिद्दां तुसी साडे नाल गल करदे हो, ते इसे तरह तो फिर सारे ने तुहानू आप चुमना आके कि बंसी जी आ गए ने।
1: नहीं अजी कल्ला आकाशवाणी है ना, जिसका कहते घर इज्जत का घर होता है, उसमें जो परिवार होता है, परिवार का प्यार होता है
0: जी बिल्कुल। ये देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल गल सही कही है जी, कि ये प्यार जड़ा है इसे तरह अपने परिवार दे विच बनया रवे, साडे आकाशवाणी परिवार नाल बनया रवे, इसे तरह
1: सोहनी है इस विच तुसी बैठे आर जे सहमान, मिट्टी मिट्टी बोली के मालिक है,
0: क्या बात है।
1: श्रोते नु भज के आवेंगे।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, साडे तुसी हौसला अफजाई करदे हो, ते अज फिर गीत कड़ा ला दीजिए। गीत शुक्रिया जी बंसी जी कॉल करने दे ले।
1: बहुत बहुत थैंक यू
0: आपका, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके जी, बाय जी।

0: जी दोस्तों, नच लई यारा गाला रे यारा, मौज मनाला भी यारा, ये दुखड़े ये सुखड़े ये दिन मुड़ के नहीं आने। गल सही है जी, बिल्कुल, ये जड़े दिन ने मुड़ के नहीं आने। इस करके सानू हरेश हमेशा जड़ा एक एक पल है उसनू जीना चाहिए, एक एक पल नू असी खुशियां दे नाल मनाना चाहिए। और जे असी खिड़े मत्थे मिलांगे जिवें कि बंसी जी कह के गए ने, तो फिर तो होर भी ज़्यादा वधिया हो जाता, क्योंकि जे तुसी खिड़े मत्थे मिलदे हो तो हरेक तुहानू मिलन की कोशिश करता है। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: नजर बदले तो नजारे बदल जाते, नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती अगर रुख बदले तो किनारे बदल जाते। प्यार
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो इन्हें खूबसूरत अल्फाज दे नाल?
1: सुखदेव सिंह बस्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुनने वाले श्रोतियां नूं प्यार।
0: जी जी सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद जी, तुहाडा वी बहुत वधिया, तुहाडी पेशकारी बहुत वधिया, अंदाज तुहाडा
0: बहुत शुक्रिया जी। तुसी साडे प्रोग्राम च हमेशा जदों पहुंचदे हो सुनिया सुनिया सत्रा लैके आने हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा।
0: ते सुखदेव जी, अज तुसी साडे प्रोग्राम च पहुंचे हो ते केड़ी फरमाइश लैके आए हो?
1: ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੁੱਗਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ,
0: ਆ ਨੱਚੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
1: ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
0: ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ
1: ਜੀ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ।
0: ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ।

0: जी दोस्तों, उन्होंने आवाज दी आ जा आप आगे, क्योंकि प्रोग्राम सौगात चल रहा है जी। सौगात प्रोग्राम का तकरीबन वेला 14 मिनट का रह गया। जिन्हें दोस्तों ने हल तक सानू कॉल नहीं की है, जरूर कॉल करो। लो जी आवाज दी, कॉलर पहुंच गए। हैलो,
1: हेलो
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च। कौन बोल रहे हो?
1: श्याम जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टवाणा, जिला फतेहबाद, हरियाणा तो।
0: जी जी देश राज जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: तुहाडा ही बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: बड़े दिनों बाद गेड़ा मारिया साडे विड़े।
1: सर जी गल इस तरह जी, मेरी माता जी बीमार ने जी, हॉस्पिटल च दाखिल है जी, सार जिंदल हॉस्पिटल च। आज 12 दिन हो गए ने जी।
0: ओहो, ते हुण माता जी दा हाल किवें है पहला ही दसो।
1: हाँ, तबीयत हुण तां बहुत ठीक है जी, सवेरे छुट्टी भी मिल जानी है जी।
0: ला क्या ही बात है जी, फिर तो साडी खुशी दा टिकाणा ही कोई नहीं है इस वेले।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: क्योंकि
1: जी।
0: माता जी एकदम ठीक हो गए ते घर वापस आ रहे नहीं, इस तो

0: जी दोस्तों बिल्कुल इसी तरह जी मेरे दो नैन जड़े है इसी तरह चमकते रहन। प्रोग्राम सौगात का वेला रह गया बिल्कुल 10 मिनट का 9 मिनट का। जिन्हें दोस्तों ने हल तक कॉल नहीं की थी, जरूर कॉल करो। लो जी कॉलर आए नहीं। हेलो
1: हेलो सर जी,
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो जी? जी मनजीत मनी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम। बिलकुल ठीक है जी, तुसी दसो सब राजी खुशी हो? आज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: हर भजन बंद ला दो सर जी, जग के अंतरे
0: जग जीवनियां दे मेले।
1: हां जी
0: गल तो सही है जी, सुनानी है जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: ओके
0: ओके जी।

जी दोस्तों, इस गीत दे नाल ही अपने दोस्त शाम शर्मा नूं अज दा प्रोग्राम खत्म करन दी दे दिओ इजाजत। इसी तरह जी हसदे रहो, वसदे रहो, अपना ते अपने गुआंढियां दा रखना ध्यान, ते किसे नूं भी नाराज़ नहीं करना, खेड़े मत्थे सब नूं मिलना। इसी वादे दे नाल मैं तुहाडे तों इजाजत मंगदा। अपनियां दुआवां दे विच अपने दोस्त शाम शर्मा नूं हमेशा याद रखना। लो जी, दिओ इजाजत। वंदे मातरम, जय हिंद।

मैं ताण दिबाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाहीं जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। इस इलाही फरमान विच उस अकाल पुरख नू समरथ बयान्या गया है, ते उसे नू ही सृष्टि दे जीवां दा आसरा बयान कीता गया है। इस करके समस्त जीव उस दे अग्गे ही अपनी विथ्या प्रगट करदे हन, ते उसे दे अग्गे बेनती जोदड़ी करदे ने, क्योंकि सबना दा साईं वो सच्चा अकाल पुरख है। प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हो तुद ते आई। सरवण करदे हां भाई हरी सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरी सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। प्रभु प्यारे जन उस अकाल पुरख की ओट अते आसरा रखते ने, निम्रता दे घर विच उस दे दर ते ही टै पैंदे ने ते बेनती करदे ने, मेल लह दयाल टै पै द्वारिया, रख लेवा दीन दयाल प्रमत बहु हारिया। भाई गुरदास जी अनुसार निमाणा ही गुरमुख हुंदा है ते उही मनुख अकाल पुरख की दरगाह विच माण प्राप्त करदा है। होए निमाणा टै पवै, दरगह माण निमाणा पावै, खसमै सोई पावदा, खसमै दा जिस पाणा पावै। भाई गुरदास जी की इस रचना का गायन किया है भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: होए निमाणा टै पवे, दरगह माण निमाणा पावे, खसमै सोई पावदा, खसमै दा जिस पाणा पावे। भाई गुरदास जी वालों उचारित 29वीं वार की इस 13वीं पौड़ी का गायन किया सी भाई निर्मल सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। आओ सरवण करते हैं इस रचना की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसविंदर सिंह दर्दी।
1: ये मुबारक पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी की रचना तो उचारण की हुई है। भाई साहब जी दियां वारां विच्चों 29वीं वार की 13वीं पौड़ी है। गुरबाणी विच बहुत वारी जिक्र आउंदा है गुरमुख अते मनमुख दा। गुरमुख कौन है? गुरमुख वो है जो अपना आपा गुरु अगे उस तो निशावर करता है अते जिंदगी विच जो भी कार विहार करता है उस विच सब तो पहला अपने गुरु नू अगे रखता है अते अंदर हमेशा इस गल दा पै रखता है कि किते मेरे कोलों कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिस नाल मैनू अपने गुरु तो नज़र चुराणी पवे, शर्मिंदा होना पवे। इसनू गुरबाणी विच निर्मल भाव भी आख्या गया है। गुरु प्रति शरदा प्यार सत्कार अते निर्मल भाव रखना ही गुरमुख दा करतव है। गुरमुख ते जे दुख आया है तां वी उस दी रजा भाणा, जे सुख आया है फिर भी उस दा शुकराना है। जे सुख दें ता तुझे अरा दें, दुख पी तुझे ते आई, जे भुख दें ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। ये अवस्था गुरमुख दी है, हर वेले शुकराने विच रहना। पर दूजे पासे मनमुख बंदा कुछ मिल गया फिर हंकारी हो गया, चला गया ते रोन लग पिया, रब नू परमात्मा नू उलामे देन लग पिया। जब कुछ पावै तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। भाई साहब भाई गुरदास जी बख्शिश कर रहे हैं, हौमै गर्व निवारी है, गुरमुख हृदय गरीबी आवै। इत्थे गरीबी तो पाव है निम्रता। जिहड़े रब दे प्यारे हैं वह अपने अंदरों हौमै हंकार नू निवृत कर देंदे हैं, कढ देंदे हैं। ते जिथे हंकार ना होवे ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ

हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। इस शब्द का गायन किया सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भर गए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़गे खाद पड़ गए जेते बरस बरस पड़ गए जेते मास पड़ गए जेते यार जा पड़ गए जेते सास नानक लेखे एक गल हुरह मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर पवै ते तुलव्या बहु पे किया दही दुख दिया सौ वै जिया।

0: लकी ची दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डूबे पूर, नानक वखाने बेनती तुरबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए, कूड़ की मल तरे तन करे हच्छा तोए। सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार, नाओ सुन मन रहसिए ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, धरत काया साध के विच दे करता बियो। सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किश पंदान करे।

दान में हिंडा तली खाब जे मिले तमस्त कलाई है। कूड़ा लालच छड़ी है हो एक मन अलख ते आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे होवे पूर्व लिखिया ता तूर तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है।

सतगुर प्रसाद, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्ज।

सागल मनोरथ पूरी आशा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो।

0: सुन से निरका सहारो हर नाम लाग जाग उदरियो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन कल उचरे तें जन के कलस दिपायो गुर अर्जुन कल उचरे तें जन के कलस दिपायो
1: सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहता तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उदरयो जगत उदारण नाम सतगुर तुठ पायो अब नाहे अव

अंत न पावत देव सभै मन, इंद्र महाशिव जोग करे। हुण वेद बरंच विचार रहो, हर जाप न छाड़ियो एक करी। मथुरा जनको प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहार।

0: तरी जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताक्षरदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो हो कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जहे मथुरा तत् विचार जहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
2: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जंपै असुर गे ते भाग

0: भोजन पायो, शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अघाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर।

दसवें प्रथम भगवते समर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दस

गुरु बोलो जे। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां

गुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हे तो शीस दते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े